तन गुरु नानक के पास नदी चुप्पी मार के खट खंड खट खंड मान लो आए थे। आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए। ये नारद वेण नदी दुख देवी नानकी को भी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वेण नदी तो बाहर नहीं निकली पर देवी ने जरूरी कि मेरा वीर कदे भी डूब तो डूबिया उतारना पशु परे मुगत को उतारे पाहन पास उतारे अजो सचखंड बन सचखंड वैसे नरम अगे रोज ही लोग जानना नहीं चाहते उस जोत के अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खताना क्या ज्योति सन जोत कुछ समय के बाद उस जोते जो सोना कांत आ के सदगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तो मान लो कल भी जीवन हर करने वास्ते वापस क्यों आ गए हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले दसो सत्खंड द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते कहना से सब कुछ है जित दर लख मोहम्मदान ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्हों अपने नींद क्यों की आवाज आई ने मैं इन्होंने दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाए अपना पति अपनिया जनानिया का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो साहबान ने हथ जोड़े वाहेगुरु फिर करो कृपा असी मातरो में जाके की दुनिया में तो उस वेले कहने अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक नमकारी नाम

मार खाई। रोड़ा से बैठ के सगुर जी ने पहली पौड़ी का दुख थी अपनी कमाई का बधाना पा के भेज गया। जिला गुजरा वाला इमराबाद और रोड जिला अपने गुरु ने विचाई की थी, दास ने सच्चे दर्शन की थी। हम पाकिस्तान जो जिला आ गए तो कह सात पंडित लेख रूपावे रोड सन, पर जिन्हें रोड़ा उसे सतगुर के पातशाह जी ने समाधि लगाई जो उन्होंने हाथ लाओ तो देखो वर्गे वेद आहार कर रोड़ा की तो करी मिठाई फिर पारी करी तपस्या। क्योंकि सानू तपस्वी बनाना थी, सानू संत सिपाही बनाना, मेरा सिपाही भी संत भी बनाना, इतने राजपाल उससे योग भी देना। इस वास्ते मार्ग में पहला आप पारी करी तपस्या बड़े पाप हर जो बनाई। महान क्योंकि कर कर दे जाके पैगाम दे दुनिया नु वाहिगुरु नाल जोड़ बाबा जी प्रकट करते सर बाणी कह मत नहीं एक कमाई करके दुनिया नु दे। गुरु ने पहला आप कमाई। वड़े बाबा जी एक बार शिमले तो ऊपर कुफरी एक जगह है उसे पहुंचे पूर्णमासी का समागम आया जिस तरह अज भाटा वाली पूर्णमासी तो उस विशेष लहर ख्याल आया चलो बाबा जी के दरबार च हाजरियां भरिए। कुफरी पहुंचे होर भी संगत दिल्ली तू देहरादून लाहौर चंग मुझियाणा होर किताब शिमले दिया संगत उसे पहुंची। रात दीवान लगा महाराजा पटियाला सारी सेवा बाबा जी ने उन्होंने संभाली हुई बड़ी संगत हुई। रात एक दो बजे समाप्ती हुई अमृत वेले फिर की संगत तो उस वेले हजूरी राजी सन भाई साहब भाई संतर जिस तरह अजकल बाबा जी ने हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर वो कितने बाहर नहीं वो तो उन गुरु नानक के पातशाह जी को हाजर नाजर जान के साहबान कीर्तन द्वारा हाजरियां भर के कीर्तन सुना के उन्होंने चिट्ठी परसों चौथ आए बड़ी मेहर की उन्होंने बख्शिशा की थी। प्यारी खास संगत तो अजकल जिस तरह हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर उस वेले भाई संता सिंह जी राजी अमृत वेले कीर्तन होया पूर्णमासी तो दूसरे दिन हाउ किस कोल घुमाया गुरमुखरी ने गरीब उसकी मर्यादा पूर्णमासी तो दूसरे दिन यही कीर्तन बड़े बाबिया को लैके इतना आनंद बनया कीर्तन का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए आप संगत उठ के बाहर आके साध संगत से जोड़े जा रहे गुरमुखरी दे गरीब कीर्तन का भोग पाया हुक्म होया सेवकान तुसी शब्द की हाजरी पर कीर्तन आरंभ किया शब्द पढ़िया कोई आन मिला रहे मेरा प्रीतम से आया हम तिस तैयार बिचारी दर्शन हर देख के कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर काम से जे सुखदे ता तुझे एरा दी दुख भी तुझे ते आई जे भुखदे ता इस ही राजा दुख विच सुख बनाई तरमत काट काट सब अरबी अग्नि आग जलाई पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सुख संगत जुड़ी गई अमृत वे एक वास्ता बाबा जी विरागन लगा के जुड़े सन अकाल पुरख ये सवेरे सुख पड़ी बाबा जी ने विरागन कह लगे।

सच्चे के गुण गा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा गुण गावत ते उतर समय सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी उतर समैल दिल सजाए होमे दुख है जन्म का

कोई भी कीर्तन कोई भी रहन सुभाई प्रवान नहीं जब तक भाई गुरदास जी की बाणी ना पढ़ी जावे। गुरु अर्जुन साहब ने वर दिता भाई साहब जो तक आप दी वार नहीं पढ़ी जाएगी कीर्तन संपूर्ण नहीं होगा। भाई गुरदास जी की जो बाणी है इसनों गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी आख्या जाता है। दुनियावी रिश्ते ये दुनियावी प्यार

साध टोली विच आप जी शब्द सरण करोगे। पंचम पातशाह जी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस सरवण करोगे।

भय प्रसन्न गुरुदेवा, तिन प्रभ जब आए मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। कहो प्रभु।

खिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीट ते करे राजंगा नीच कीट ते करे राजंगा कभो न विसराही।

संत बाबा तरसेंगे, महापुरुष वस्तु आने वाले। कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे, महापुरखा ने आख्या आज भाई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म आज ही प्रबंध कर लेने हैं, मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी, भाई कल्याण सिंह जी पांच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हैं करो। आठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा, फिर दुगनी मजूरी देन लगा। कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हन, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते आज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे। जिमें कि 68 तीर

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे, निंदक दी ए निशानी है जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों

उर्वरा गुरु रामदास नाम का उर्वरा जहां मान अपनी में सिद्ध को सभा जहां

राग भैरवी है, भैरवी ठाठ तो यह उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। वादी संवादी कुछ लोग मां ते सामान दे ते कई धात गंधार नू वादी संवादी मानते हैं, लेकिन ये गाण दे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वादी संवादी, भावे मां सा होवे भावे धात गाओ।

खुशियां बादशाहियां ये सतगुरु नजर करे। आई रिसीव ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ इफ हिम आई रिसीव एंड माई लाइफ हिज प्रेशियस गिफ्ट बिकम्स ब्लेस्ड इफ आई रिसाइट द ट्रू वर्ड। ही हु इज डेस्टिन्ड एंटर्स द लॉर्ड्स कैसल थ्रू द गुरुज ग्रेस। माइंड यू ओ माई माइंड द वन एंड वन अलोन। Without him, all else is waste, illusion, maya, and false love. One enjoys myriads of joys, one is a king if the Lord's grace be upon him.